भीष्मार्थः गणतयतुलः ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा भर न सको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, गौड़ी कबीर जी तिप दे चार तुके, जम ते उल्ट भए है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। जम ते उल्ट भए है राम, दुख बिन से

साकत उल्ट सजन पहे चीता, अब मोहे सर्ब कुशल कर मान्या। शांत पही जब गोविंद जानिया, रहाओ तन में होती कोट उपाध। उल्ट पही सुख

बचे। बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जहाए सतनाम श्री वाहिगुरु जी जैत श्री महला चौथा।

कृष्ण देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा हे बिनंती सुन प्रभ मेरे देह नाम कर अपने चेरे पेख पेख जीवा दर्श तुम्हारा चरण कमल जाही बलिहारा तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा दीदने दीदार साहेब कछ नहीं इसका मोल पाक पर्वत गार तू खुद खसम वड़ाया तोल सुकहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परसें गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सुही महला पंजवा बहती जात कदे दिष्ट न धारत मिथ्या मोह बंद है नित पारच बहती जात कदे दिष्ट न धारत मिथ्या मोह बंद है नित पारच माधवे भज दिन नित रहणी जन्म पदार्थ जीत हर शरणी रहाओ

पुत्र सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आप हर पूरे ब्रह्मंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे।